0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर 100 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया ईएफटीए एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all five Nordic nations at third India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
1: एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है।
0: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
1: 2030 तक हमने 500 gigawatt clean energy और 5 million ton green hydrogen produce करने का target रखा है। Clean energy investment नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from

राजनीय सतम खजनी जुलियांग सुबाइलायो नगले सचिनी गई पैकले हतिया चेक मंगसे मुटा बो मशिंगले चक्रा बदो योग्रा माइक्रा राना नंगाई माइक्रा रावो इको पाई खेनो इको माइक तोई राना

माकुले हंगाई बा माखुंगो नंगो मारो हंगाई बा बालायो नंगो बालाय मतो मुई तंगो कुई दाय रंग सिदो किटिंग बारिया जुनो

बदल बदल हथियार थनु किटिंग बढ़िया जुनो बदल बदल ये जो आंग थनो मगन चन बगो किटिंग बढ़िया जुनो।

अशोक जराजिंग हाचिक निरजाबुंग पांडव खनालाख्या खनातोक रचापुंग ताकुक हेमेंद्र देवबर्मा ते बुकुक मालती देवबर्मानी खरांगो रचापचा खनातोक रचापुंग जिन खनालाइनो पाइक्या 101.6 मेगाहर्ट्ज एफएम उजेंतो हाके जिन अबहैनो हाचिक निरजाबुंग पांडव खनातोक रचापुंग लो खनालाइ दोंगो जादुनी रचापुंग लो खनालाइ दोंगो तेरक तेरक पांडव जरा हाचिक निरजाबुंगनि जराबो बायरे बायरे गाव जिन सायमानो दिनि क्राक्साल जिन बिलाव हाचिक निरजाबुंग पांडानो दै दुलो हाबनि आगलोंखै जिन दिनिनि वानसुबुंग पांडा तै बायथागो जिन दै दुलो काहाम तंदि रिङै दङ लामा अबायखेनो जिन पांडानो दै दुलै दङ दिबुलनि दामनि तामै सति थामजि जरा हांखे फायदि अजराव हायनो हायरो चापुंग जिन खनालायनाय हांखे सानानि मुजुंगन रग चतनो पाइपलाया हामबाय माया फरो सालब्रुमनो सारासा पॉइंटक मेगा हार्स एफएम जेंतनो ट्यून क्लाइ खनाय दंमानि बागै सालब्रम नचुंनो लगिनि दंमानि बागै दे देबो सानानि मुचुंगो नरकनि तिनि निसाल जतनि बागै न काहाम लाइनानि इंथुन जतनो जिं जत बर रक्न काहाम किन तंगनानि मुचुंगो जिं केबो फनो हामियाके तंगनानि मुचुंगिया जतनो शाकमां काहाम बेबा काहाम के तंगना मुचुंगो फियाबा जराव जिं अमा हाइके तंगै माइनि हाइपन जिं चिनि खानो मेथेबै जिं बुस्कांगो नमा थांलायनायहाय देबा चिनि खानो लेंनियावो चिनि खानो गोस्रांके जे मानसाकजों तंनानि माचाय दगायनाय हिंखे अजराव अरोजाबुं दाबुक जों खोनालायनाय रांखल कक थायबायखे रोजाबजा खोनाथ' रोजाबुं हाचुकनि रोजाबुं बान्दाव खोनाय दंदि लगि दंदि

नरखनाय थंगो 101.6 मेगाहर्ट्ज एफएम उजेंतो जराव स्टुडियो आसुक सगांग बिनता हंके जतनन दिबरका हम ताबुक चिनि स्टुडिने जरा खग तामुई थंगो दिपनि दामचिनि तामुई शतिकाय संगे मुफ्लि थामचिसा हंके जराव नरख जतनन दिबरका हम ते नरखनि तिनि निशाल जतनि बागिनो का हम लाइनेनि थुन कै तिनिनि वानसुकुंग पांदा ग्राक साल जो जतन सैमानो हंगे तीन वानसुक पांदा हंगे जो कैसे कैसे बर्तमान तुई नरक बै कग्लाम सालाइने आबोनी बागे नरक जतन तिहार दंगी तेई खनाय दंगी पांदा पाय शाक जरा चीनी पांदा नई तीन वानसुक पांदा नरक आंग बै ग्रंगनानी बागे जतन

जोङो जेरावो गाहाम थुंदि हिरिङै दङलां मा अपान्दाव रोजाबुं खोनाला क्या खोनाथक रोजाबुं रग खा खालायनो रग जतन खोनाथक जाबाय खोना रोजाबुं रग न हंखाय जों गाहाम थंनानै हिंखा हंखाय जों लग नुखंग जतन गाहाम थंना नांनाय साकमां गाहाम थंना नांनाय रां रि चुगजाग ना नांनाय रां पैसा चुगजाग ना नांनाय दे चिनि जतन साक साक चुगजाग गांके आजराव जों गाहाम दङै मानु आबो हाइके जों गाहामखे दंखाखैनो चिनि लांमाब हाइनो गाहाम अंगु हंखे जों आबोनि बागै जों पुइलानो जों चिनि साकमांनो गाहाम ख्लायमा दोनैने साकमांनो गाहाम ख्लायदोननांखैनो चिनि चामुं तमुं बेबाकनो जों थिथिखै मा दंनाय ओंखाय जों साकमां हामिया ओंखाखाय दिनै यागो रां पैसा जेसेबानो गोबां दंथों बाक्सा बाक्सा बेमार हामसुगिया बेमारबो दङ जों जथन' सावै मानो ओंखाय जों बाया बेमार न' रां पैसा जेसेबानो दङै दंथों आबोनि बागैनो जों सिगांबारियानो जाहाथे दिनै साकमां गाहाम दङै दंना तै जेतिखे चिनि सागो बेमारि ओंगिया तै सिगांबारियानो जों गासै दंना नांनाय गासै दंना हांखे जों चिनि चामुं चिनि तमुं आबोनो थिथिखाय मातनो जों जतन' लांमानो गाहामखाय दनैनानि बागै रां पैसा आजिउ खरक साफानो गोरिना आजिया जतन' मुचुंगु आजिउयै गाहामखाय दंनानि चिनि लांमानो गाहामखाय दनैनानि फियाबा रां पैसा आजिखाय सिमिनो चिनि लांमा गाहाम ओंगानो आबया रां पैसा आजि माबाय बाक्सा आ रां न' चिनि लांमानो गाहामखाय दनै थानिब बाहायखे सामुगो थेबानाय आबो जों सिना नांगौ सायमानानि नांगौ जों जराबो अबहाय चिनि लांमा रां पैसा आजिउ गोबां फियाबा सोबाय मानिब गोबां नङै थाङो जराव चिनि साखामिया बेमार गथ'लग थांखांखे रां पैसा आजि फानो खाथि जाग्रै थिथि ग्रैनि बागै जों गाहाम ओङै मानिया बेमार न' हामरि मानिया ओङै थाङो हायनि बागैनो जों लांमानो गाहामखाय दनैनानि हिंखाय चिनि रां पैसाजों जेसे जों आजिव आरो नि किसिसा दिनै साकमां न' साक नायजाग थानिव सामुगो जुगनानि बागै जों किसाले खादिनानिब नांगौ आबो साकमां साखामिया एबा बेमार नायजागनानि बागै सिमि नहिनै जुदाखायै आलादाखायै खादिना नांगौ दे जों बोसा बोतै रंनि थिनांनि बागै होनैब आलादाखाय खादिनानै नांगौ आबो हायखे जों चिनि आजिमानि रां न' सामुगो थेबावै मानखाखाय चिनि लांमा हायनो जोंनो रिंनाय गाहामनि फासिं हाय दाना ओंखेफायदि रोजाबुं खोना लायफिनाय खोनाथक रोजाबुं नरकनि बागै खोनाय दंदि दे लगे दंदि बालायनो खोनाथक रोजाबुं

रखनाय थंगो सारासा पॉइंट ऑफ मेगाहर्स एफएम उजेन तो जरा स्टूडियो आजुक सारा आं बिनोता के काहम तों दे रिंगि तों लांग माव पांडा जों खनातो तो रचा पं खनालाय तों ते कोक्लाम शावै तों जों बाहाय बाहाय के जों चिनि लांग मानो काहम के तनि मानो बरक न तै जे नुक माने जे सिमानि ते जे साइमन माने आबरक न तै न नरक पाइ शेयर खाय तों आ जों चिनि लांग मानो काहम काय लांगनि हुके जों खरक्सानि साखाव सिमिनो बजा रुजुदि माने आबोबो जायाव खबजागोन हायादा तामनि हिंखे जों रमदि नक नुखुंग खरकजा जेला फानांखा सायसुं न आजिनाय हिंखांखाय बजा हिलिक बन रुजुदि माने आबोथ' जाया नुखलायनो हायादा सायसुं बाहायासो ख्लायमानायबा हिंखे आ सायसुंनि आजि माने रांबाय जों चिनि लांमा जों ओंगैमानो जों न सालब्रुम न माइ अकुंगै फाथिक दाम जारिमानानो चिनि मुचुं मारक सुबुं गैमानानो फियाबा चिनि लांमानो देबो नायथतक दे काहाम खालायनानै दे सायसुं न बजा हिलिग्रिबै एंग्लाक जों जे रमदि नगो बुरै हनजाखनाय रक दमुं न नग नुखुंनि सामुंबाय बाक्सा आजि थानियोबो लगिरि काके चिनि लांमा देबो गाहाम नायथतकुंगु आ थानिबो हाबांनि बोखाखदै गोबां मा सेप रोजाखै दङ दाबो ब्रेरक न साग बायथां जुग्रिनानि बागै साग बायथां बाचारिनानि बागै जों साग बायथां बाचावै मानखाखाय जों ब्रै हनजाखनाय रक साग बायथां जुगै बाचाय मानखाखाय साग बायथांनि मुचुंमानि मानै खनै रक आब' जों नासिंनानै नांगिया हायादा रमदि जों बोसाय हनजाखनायनि यागफोरनो जों मानो मानियो एंगिया फियाबा जराव चिनि नग नुखुंनि जत' बर' रक न नायकलै दंनानै हंखाय बजाबो हिलि बेलेना हांखे जों आजरा रगो हंखे दं खुदि तेकिसा नासिंगादि हिनि रगो जों मा सालायो हंखे जों नासिंनानै रक नांगौ हंखे दमुंनो जों बोरै हनजाखनाय रक ब' किसा मिसा आजि थानिब' साग जुगै बाचाय मानखा हांखे आफ्रु रगो हंखे जों खरकनो हिक सायनि खरकनिनि आजि मानि रांबाय जों दैसा गाहामखाय जोंनि लांमा गाहामनि बागै जों खादिनानै हिन्दि एबा सामुं हुमुं खालायनानै हिन्दि एबा बोसाबोथैनि बागै सामुं खालायनानै हिन्दि बेबा जागावनो जों बाक्साखायै वान सुग्लायै याप्रि गाहाम सेवै मानाव हायादाबा जों गाहाम खादिबो मानो जों गाबोनि बागै जों गोबां मानुगो दाबुक गामि आमचाय रग' जों मथा खालायै बायथां नायगलनाय बदल एबा सेल्फ हेल्प ग्रुप थिनि खाजाकमानि दे आरोनि बिसिंग' हाफांनि बोखाखदै आरो बुरै बोसा रक न' स्पेसियेलि आब' बुरै रकनि बागै न' खाजाका हाफांनि बोखाखदै जुमानानै होनै बुरै रक न' साग बायथां जुगै बाजारिनानि बागै न' अमथा आगिनि सिमिन' खाजाक दङ हायादा हांखे दाबो अमथाव गोबां मा सेब रक जों मथाव हाबगा हांगाय गोबां मा सेब रक मानि मानो रमदि नों लागायनो हारै आजिनानि याप्रि सेवै मानो दै जों आरो गोबां मा सामुं मानिया फानो सामुं सिरोंनायनि बागै ब' सेब गाहाम दङ ब्रै रकनि बागै हिंखे आलामाबो जों जुस खायमानो आलामानोबो जों सायनो हारि मानो जों मुजुंखा हांखे हायादेबा हांखे दामखेबा जों खालायना मुजुं मानि आब' जोंनि सागो दंना नांनाय दै जों खालायनानि दिनैनाय खा चंगै साग साग न' बयद' दंनानै नांनाय हाखे जों ओंगै मानाय हिनै हायादा ओंखाय आरो गोबां मा सेब

मानो गोबां सोरोंनानै शेप मानो ते जों आमोबाय बानियावो स्टेप नाय मानो याप्रि बारगै मानो गोबां मानिनि जे इन्टारेस्ट नों जे हामजाक मानि आबोनो चूज खाय मानो रोमदि गोबां मा बुरि रक दङ अमाहाय सेल्फ हेल्प ग्रुप खावै लागायनो हारै गोबां मा मानै रक स्नामै हाथिरको फालिदों मानि ते आरोनि ग्रुपनि हयते ग्रुपनि बिसिंतै तार रक नाहारै तार रकनि गोबां मा रिगनाय रिसाहिन्दे आबहाय गोबां मा रिचुम रक खालायै तागै फालिदों मानि रक बजों गोबां मा नुगौ ओंखा आबहाय खेनु जों बजागावाव बाहायखे जों आजिनानै लामा माननाय बाहायखे जों हाफांनि सेब सान्दक माननाय आबो रक्न जों सायमाना नांगौ सिना नांगौ गाव बाहायनो ब्रि रकनि बागै हिंखे सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय थांनाय कलनाय बदल अब बेलाय खेनो कायसा सेब गाहाम रौ आरो बिसिंथे जों लागायनो हारै जों आजिउ मानो जों बानिया ख्लाय मानो आरो बिसिंथै जों गोबां मा बानिया ख्लायनानै सेब मानो गोबां मा सामुं सोरांनानैबो जों सेब मानो ट्रेनिं दं गोबां मा रेडि जागौ हंखे जों दम नामाहायखे साग बायथां जुगै बाजाय मानखा गायनो दिनै लांमाबो गाहाम नंनाय बिलिना ओंखाय आरो जों मुसा साजानानै एसे गोरै दा हायादोबा जों गाहाम लांमा मानि मानो गाव बहायखेनो जों ब्रि रकबो जों गोबां मा सामुं रक सोरोङै मानो दाबो आजिनानै लाम गाहाम गोबां मोनो दङ जों साग बायथांसे सिना नांगौ देखायसाखै जों आरोबो जों लागाय मानो नै लागायसिमि नाहार माबाया आमोहायखे जों लांमा गाहाम मानिया दामुखे लागाय मानै लागाय मानानि आबो कायसा सेब गाहाम हायादेबा जों आहायनो बें रगो हंखे जों आजियानि गाहामखाय आजिनानै लाम फुनुकमानिया हंखाय लागायरक रोजागिया फियाबा ब्रै रकनो साग जुग्रिवै साग बायथां बाजारिनानि बागैनो अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मथा दङ हंखे बरक हंखा हंखाय ब्रि रकनो लागायरिवै साग जुग्रि बाजार हंखे जों आ लागाय नाहारमानि रांनो सय सयनो दिनै लांमा गाहामनि बागै सामुंग थेफानानि बागै जों सामुं ख्लायनानै नांगौ ओंखाय बायदि अजराबो जों हायनोहाय रोजाबमुं खोनालायनो दामोन दिरोग दिरोग जराथ' थाङै दङ ओंखाय खोनाथ' रोजाबमुं नरकनि बागै खोनाय दं दि लगि दं दि

जों बानियाव याप्रेसियाव मानते आरोनि जिमि गोबांमा जोंनो सामुं स्रोंनानि बागैबो शेप रिजाखौ ब्रै रखनो साग जुग्रिनानि बागै गोबांमा शेप जों मानि मानो आर शेपनो जों सामुंखौ थेबावै जिनि लांमानो गाहाम थ्लायथानि व जों नखनि जे जोंनो नायकलि दंनाय जेला हानजाबनाय रखबाय बाक्सानो जों किसामिसा गोबां आजुवै मानिया फानो किसामिसा साग बाय थांनि साग बायथांनि मुचुंमानि मानैरक बायद्रब साग बायथां खादिना मुचुंमारो खादिवै मानद्रब अबा हायखे जों जुबाय मानो ओंखाय हायखेसे जिनि लांमानो जों गाहामखै तलाङै मानो जिनि नक नुखुं न जों नायथथखै तलाङै मानो हायदाना हायनि बागैनो जों जेलारक बाय बाक्सानो जों ब्रै हानजाबनायरक आजिना नांगौ दे आजिमा सिमिया आजिमा बाय बाक्सा जों खादिनानै नांगौ जों बाहायखे खादिमान आबरक जों सिना नांगौ तेजु दबोखाखौनो जों थिदिखायै सिगुयै सायमानानै नांगौ हायदाना ओंखायफादि अजराव जों हायनावहाय तेतांसा रुजाबं जों खोनालायनाय जराथ' द्रुग द्रुग थाङै दङ ओंखाय अजराव अरुजाबं नरकनि बागै खोनायथंदि लगिथंदि सारासा पइन्ट अफ मेगाहार्स एफएम उज्जेन्त' बेलायनो खोनाथ' रुजाबं

जीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीति

0: आर्थिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard.
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सर राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सर राजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने

संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश यानी मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: আকাশবাণী আগরতলা শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी। पकड़ो।